कईयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।

0: छैन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनौ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: रंग बहार रंग बहार
3: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
2: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
3: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि
2: घर रंगाउ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ बर्जर पेन्स

0: भुक्क हूँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: रंग बहार रंग बहार
3: वर्ष संगे उपहार उपहार बम्पर मार यामाहा रेजियर
2: वर्ष पेन से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
3: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि।
2: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ। वर्ष पेन्स

0: छैन, ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सकै अभिकर्ता बनौ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड।
2: रंग बहार रंग बहार
3: वर्ष सके उपहार उपहार बम्परमा यामाहा रेजियर
2: वर्ष पेन्सले घर रंगाउनुहोस् त लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कुटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
3: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वासिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
4: घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
2: वर्ष पेन्स

0: 98 62 22 26 60।
1: रंग बहार रंग बहार
2: वर्ष संगे उपहार उपहार बम्पर यामाहा रेजियर
1: वर्ष पेन से घर रंगाउनु होस् त लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ।
1: वर्ष पेन्स